0: Chào hà dù mì sô lù FM cô
1: Solu FM 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
2: साइन्चे साइन्चे Solu FM स्टुडियो टाइम
3: Six
1: PM. We have a 6 बजे. Time check को साथ में New Star Digital Color Lab तथा ज्वालामय Offset Press. सोलु दुपुन नगर पालिका पास सोलु कुंडू.

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sound check. Surya FM. Studio time.
4: It's 7 a.m. Bihan ko 7 baje.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुदकुंड नगर पालिका 5 सोलू कुंदू

0: उज्जवल FM 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सन्चे सोनी FM स्टुडियो टाइम
2: It's 8 AM बिहानको 8 बजे
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: गोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 9 AM बिहान 9 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बु
3: राष्ट्र को शान किसान
4: अ कंप्लीट फाइटिंग सॉल्यूशंस

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
1: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
2: टाइम चेक सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
3: 10 एम बिहानको 10 बजे
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलु कुम्बू

0: সেই ঠাকুরা কাস্টমে যান জানো রেডিও নেটওয়ার্ক।
1: তাই আহিলে সুন্দর হুনুহুন্ছ উজ্যালো রেডিও নেটওয়ার্ক কাঠমান্ডুমা 90 মেগাহার্জ। अब सुन्न सक्नुहुन्छ चित्रमहर।
2: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन क्षेत्र।
3: हुंडा का विशेषता
4: जापानीज उच्च प्रवृत्ति उत्पादित
3: उत्कृष्ट माइलेज
4: राम्रो रिसेल मूल्य
3: टिकाऊ भर पर्दो
4: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
3: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लंच भइरहेको
4: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
3: हाम्रा सेवाहरू
4: उखलढुङ्गा र खोटाङको डिक्टेल बजारबाटै फाइनान्सको सुविधा सहित हुन्डाका सबै मोडलका मोटरसाइकल तथा स्कूटरहरू कम्पनीकै मूल्यमा पाइने।
3: जुनसुकै मोडलका जेन्युइन पार्ट्स पाइनुका साथै सर्भिसिङ सेवा
4: एक्सचेन्जको सुविधा सहित मोटरसाइकल तथा स्कूटर खरिद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निशुल्क दिइने।
3: अनलाइनबाट बुकिङ गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरीको सुविधा समेत रहनेछ।
4: उखलढुङ्गाको लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टिपर्पज सर्भिस टाली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारी भुजाई उखलढुङ्गा।
3: सम्पर्क नम्बर 037590222 9852880222 र 9842280300।
5: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सुन्न एफएम। अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न नेपाली पद गीतहरू।

0: आत्मा हत्या को घटना कसरी रोक सकता
1: डिप्रेशन मदिरा लगू औषधि सेवन निराशापन आर्थिक समस्या पारिवारिक कलह दीर्घ रोपनी शिकार लंदर को सफलता ने मन खुशी न होने रिमाइंड लग्न पड़ने कुरा में नलाखने शरीर में थकित महसूस होने निंदा नलाखने खाना में रुचि न होने बास सम्मान नलाखने आत्मविश्वास

0: Raio Rádio Solo FM.
1: Solo FM 101.2 MHz. उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
2: साउन्ड चेक सोनी एफएम स्टुडियो टाइम
3: 3 PM दिउँसोको 3 बजे
1: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोनु दुतुन नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु।

0: Wherever you are, stay connected with the wider world with the BBC World Service. Now streaming on Zeno.fm and the Zeno Radio app.
1: Where do we begin?
0: With international news you can trust, BBC News.
1: Journeys into the heart of global events.
0: And voices from around the globe.
2: The whole region is in the grip of a severe water crisis. And I'm here to find out why.
0: The BBC World Service, right here on Zeno.fm and the Zeno Radio app.
3: प्रसंचालक समिति को संरचना में सहमति तीन स्वतंत्र सदस्य मध्य एकजना महिला अनिवार्य विक्रेता और उपभोक्ता गैस संचित करें नराख्न आग्रह अभाव नहुने गरी दीर्घकालीन समाधान खोजन निगम सुझाव अमेरिका का 25 राज्य ने ट्रंप प्रशासन को नया भंसार शुल्क विरूद्ध में मुद्दा दायर करे प्रशासन को निर्णय मनोमानी और कानून विपरीत रहकर भनाई इंग्लैंड का मिडफील्डर एंडरसन चेल्सी में आबद्ध खबर में अब पूरा खबर सुनसरी को कप्तानगंज में गये साउन 10 गते आईतवार राति घटना में घाइते अर्का एक युवक को जान गये जिला प्रहरी परिसर काठमंड का अनुसार देवानगंज 3 का घाइते 22 वर्षीय रविन्द्र मेहता को फिर्वी शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में उपचार को क्रम में आज बिहान जान गये हो। इसमें कप्तानगंज घटना में जान गुमाने का संख्या 3 पुगे सिरहा में जान गुमा एकजना से 4 सुनसरी को देवानगंज गांवपाली का 3 कप्तानगंज में युवा को संभावित झड़पुंडा प्रहरी ने चलाये गोली लगे 10 जना गंभीर घाइते भैया थे। घाइते मध्य इसी दीवानगंज 4 का 25 वर्षीय ओम प्रकाश मेहता दीवानगंज 3 का 22 वर्षीय जयप्रकाश मेहता को जान गये थी। अरू घाइते को विभिन्न अस्पताल में उपचार भैर यही घटना को विरोध में सिराहा को गोल बजार में प्रहरी को गोली लगे गणेश यादव को जान गये थी। सिन्धुली को फिक्कल गांवपालिका 2 नवलपुर नजिक सुनकोशी नदी में हराइरहेका 3 जना यात्रु र कार को खोजी कार्य आज भी भइरहेको छ। हिजो बिहान बागमती प्रदेश 08001X0144 नंबर को बस ने टक्कर दिँदा सड़क में रोकिरहेको कार नदी में खसेर कार र

0: 还有话就你说路 FM 不单单
1: सोलू एफ एम 101.2 मेगाहर्ट्ज़
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: टाइम चेक सोलू एफ एम स्टूडियो टाइम
4: 5 PM साँझको 5 बजे
1: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलू दुतकुण्ड नगरपालिका 5 सोलू खुम्बु

0: Bonche, Solu FM, Studio Time.
1: It's 6 p.m. साँझको 6 बजे
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन FM 101.2 MHz
2: उज्ज्वल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Time check. Solu FM. Studio time.
4: It's 7 p.m.
5: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतकुण्ड नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

0: Raio Rádio News, Tono é tempo.
1: Tono FM, XA1.2 MHz.
2: Ujjwal Bhavishya ko lagi, hamro abhiyan.
3: Sanche. Tono FM, Studio Time.
4: It's 9 PM, ratko 9 baje.
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतुंडा नगर पालिका पास सोलू कुंडू ई दाई राई को साथ स्टोर में दीदी ने कपड़ा ऑर्डर करने भाई को थी मत एकले भए जाऊ न मेरे साथी
5: मैं राई को साथ स्टोर समान जान लागेको ल हिड़ नया नया डिजाइन का कपड़ा ल्याउनु भएको छ।